आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम ईशान अमादो वागुतु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह